संपाद समाचार या तेरी एड्रेस कंडीशन है, लेकिन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बृहस्पति शनि अरुण गुरु, बृहस्पति शनि अरुण गुरु।

0: ठीक है मामा, मैं अभी उसको यहाँ से दफा करता हूँ।
1: Shut up शेखर, don't talk nonsense।
0: कौन है?
1: मैं इससे कुछ पूछना नहीं चाहती। मैं इसके घर जा चुकी हूँ, दादी माँ से मिल चुकी हूँ और डॉक्टर अंकल रतन को अपना बेटा कहते हैं।